आपकी विसाखी का पुरब मना रहे हो। अलगीधर पातशाह जी ने खालसा पंथ की अज साधना की सी विसाखी वाले दिन ते शब्द भी उन्हों का ही है अलगीधर पातशाह जी का दोवे शब्द राग विच दास पढ़ेगा दोवे शब्द कलगीधर पातशाह जी देने पहला शब्द जो मैं पढ़ के सुना देवा क्योंकि आप जी कई बार समझ नहीं आवेगी कई तुका दी अस्थाई दी तुक है दीनन को दाता है गनीमन को गारक है साधन को रक्षक है कि गुनन को पहार है अकाल उस्तत ओ वाहिगुरु गरीबां दा मालक है दीनन को दाता है ते दुष्टां दा ओ नाश करता है ते अपने सेवकां संतां दी ओ रक्षा करता है ते ओ गुनां दा पहाड़ है पहाड़ मतलब दीनन को दाता है गनीमन को गारक है साधन को रक्षक है गुनन को पहाड़ है तेज को तर है के राजसी को सर है के शुद्धता को

ममता की बाण है कि बुद्ध को उधार है, सुंदर स्वरूप है के भूपन के भूप है, के रूपों के रूप है के कुमत को प्रहार है। ये शब्द रीत जो राग दास शुरू कर रहा है, राग है पटियाल। पटियाल भी दो तीन तरह गाया जाता है, बिलावल ठाट नाल, मारव ठाट नाल। ते अस्थाई है यदि दस मात्रा छपता, उस तो बाद इसे ही बारह मात्रा विच करके दास ने गाना है। सब तो पहला दस मात्रा झपता, दीनन को दाता है, गनीमन को गारक है, साधन को रक्षक है के गुणन को पहार है। आप जी श्रवण करो। उस तो बाद जो अगला राग होवेगा वो होगा समेदा राग शुद्ध सारंग। मेरी अवै विनती सुन लीजे, हे रव हे सस हे करनानिद, मेरी अवै विनती सुन लीजे। दूजा शब्द रीत राग जेड़ा शुद्ध सारंग विच तीन ताल विच होवेगा, पहला जपताल ते इकताले विच। आप जी श्रवण करो।

भगत नामदेव जी इस शब्द दे विच जिस थीम नू असीं अज आरंभ करना है, जिस विचार दी लड़ी आरंभ करनी है, वो है नाम। ते भगत नामदेव जी अपने जीवन का जो निचोड़ है वो दस रहे हैं, ताकि सानू भगत जी के इन शब्दों के द्वारा कोई डायरेक्शन मिल सके, कोई समझ प्राप्त हो सके। कहते हैं, मैं अंधलहे की टेक, तेरा नाम खुंदकारा। मैं अन्ना हां, अंधा हां, पर तेरे नाम की स्टिक जो है, तेरे नाम की जो छड़ी है, वो मेरा आसरा है। पाप के तेरे नाम की मैनू सपोर्ट है, तेरा नाम मेरा सहारा है। पाप के तेरे नाम तो बिना, तेरे नाम की छड़ी हाथ च होण तो बिना मैं एक कदम भी चल नहीं सकता। जीवन दे विच अत्यंत खड्डे हन, टोए हन, उतराव चढ़ाव हन, उन्हां दे विच जद तक तेरे नाम की छड़ी मेरे हाथ विच है, ओ मेरा अंधले दा आसरा है। तेरा नाम खुंदकारा। फिर आखते हैं, मैं गरीब, मैं कुछ नहीं हूं, मैं मस्कीन, बिल्कुल जो खाली हो, जिसके पास कुछ ना हो। पर कहते हैं, ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल ही गरीब हां, क्योंकि तेरा नाम है आधारा, तेरा नाम मेरा आधार है। तेरे नाम तो बिना मैं अपने आप नू गरीब और मस्कीन समझांगा, पर जब तेरा नाम मेरे पास है फिर मैं गरीब नहीं रह जांदा, क्योंकि गुरु महाराज जी अपनी बाणी च आखदे हन,

दुख, पेन, सफरिंग, मिजरी, कहते कहते जहर है लाइफ, पॉइजन है। दुख मोहरा, मोहरा मैंने पॉइजन। जितने भी सारी लाइफ पेन है, मिजरी है, दर्द है, सफरिंग है, वो कहते एक जहर है। हुण उस जहर का इलाज की है, मारण लफज वरत्या है। मारण का मतलब हुंदा मसाले पाके दवाई जो तैयार की जावे, अर्ब्स वगैरह पाके जो दवाई तैयार की जावे, कहते उसनू मारण आके। अगर पेन एंड सफरिंग लाइफ के विच पॉइजन है, तो उस पॉइजन नू केड़ी चीज मार सकती है? बहुत ज्यादा ध्यान दो, ट्राई टू बी फोकस्ड। दुख मोहरा, दुख जहर है, उस जहर नू मारण दे वास्ते ए बड़िया इनकरेजिंग लाइन्स हन। इन द सेंस कि जिस किसे इंसान की जिंदगी अत दुख है, सफरिंग है, मिजरीज हन, उदे वास्ते एक सोल्यूशन दसया जा रहा है, एक वे आउट है, एक होपलेसनेस सिचुएशन दे विच एक होप दिखाई जा रही है। कि तुहानू वरीड होने की लोड़ नहीं, चिंता करने की लोड़ नहीं। अगर जिंदगी च पॉइजन आ गई है, दुख दर्द परेशानियां आ गई हैं, तो महाराज जी आखदे ने मारण, मारण का मतलब मसाले पाके कीती हुई तैयार दवाई, जड़ी दवाई है उस जहर नू मुका सकती है। कहते हैं वो है हर नाम, वाहगुरु का नाम। दुख महारा मारण हर नाम, दुख नू मारण वाला, शक्ति रखण वाला एक ही पदार्थ है, वाहगुरु का नाम। सो नानक के घर सारे बोलो केवल नाम। इस पंक्ति नू याद करना है, वी विल गो ऑन रिपीटिंग दिस लाइन एवरी डे। नानक के घर केवल नाम, तो मैं तो बात बोल रहा करो, कितने नाल कोई आप दिन थकावट नहीं हो जाएगी। नानक के घर दुनिया दे विच बहुत ज्यादा इग्नोरेंस है, बहुत ज्यादा डार्कनेस, न समझी है, अज्ञानता है। तो महाराज जी ने पूछिए, महाराज इतनी अज्ञानता है, इतनी नासमझी है, इतना अंधेरा है, तो आप जी दे कोल की इंतजाम है इस अंधेरे नू दूर करन दा, चानन जगान दा? तो गुरु महाराज जी आखदे हन, दीवा मेरा एक नाम। कहिंदे नाम ही एक ओ दीवा है जिहड़ा ह्यूमन लाइफ दे विच्चों डार्कनेस नू, सोसाइटी दे विच्चों डार्कनेस नू, पूरे ग्लोबल लेवल दे उत्ते डार्कनेस नू, इग्नोरेंस नू, इलिटरेसी नू जो दूर कर सकता है, वो सिर्फ नाम दा दीवा है। कहिंदे मैं नाम दा दीवा लेके आया। अते आप देखते हो जदों दीवा बलदा है, तो आहिस्ता आहिस्ता केड़ी चीज है जिहड़ी बर्न हो जाती है, जिहड़ी सोख हो जाती है, जिहड़ी खत्म हुंदी है, वो तेल हुंदा है, तेल खत्म हुंदा जांदा है। महाराज जी आखदे ने साडी सारी जिंदगी दे जिहड़े दुख हन, उहनां नूं समझो तेल, दे विच नाम दा दीवा जगा दिओ, नाम दी बत्ती जगा दिओ। नाम दी बत्ती सारे ही दुखां नूं बर्न करके रख देगी, जिस तरह जगदा होया दीवा तेल नूं बर्न कर दिंदा।

फिर महाराज जी ने पूछी, महाराज धर्म दे विच पूजा दा बड़ा स्थान है, पूजा धूप बत्ती बालो, जल छिड़को, फुल लियाओ, टलियां बजाओ, शंख बजाओ, बहुत किस्म दे नाल लोग पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, आप जी की सुजेस्ट करते हो पूजा किमें की जानी चाहिए। महाराज जी आखते हैं साडे घर दे विच नाम ही पूजा है और कोई पूजा नहीं है, नाम जपना ही पूजा है। ए बाबा जी का जो नाम दे प्रति विचार आप जी सुना रहे हैं, कहते हैं पूजा कीचे नाम त्याइए, नाम त्योना ही पूजा करना है, जो नाम नहीं त्योंदा बाकी रिचुअल्स करी जाता है वो बाहर बाहर है, बाहर बाहर है, वो पूजा नहीं। पूजा उदो होंदी है जदों किसी का नाम दिल च बस जाए, वो पूजा होंदी है। कहते हैं साढ़े घर के पूजा भी नाम जपना ही है और कोई पूजा नहीं है, कितना सिंपल है।

नाम जपण तो बिना कोई पूजा नहीं हो सकती। स्वयं समझ लेना चाहिए और समझ के अपनी डायरेक्शन भी मोड़ लेनी चाहिए है। मेरा सुनना ही नहीं चाहिए, अमल भी करना चाहिए। अगर असी नाम जप रहे हैं तो समझ लो असी पूजा कर रहे हैं। अगर असी रोजाना नाम नहीं जपते तो कोई पूजा नहीं कर रहे। बाबा जी अगले पूजा कीचे नाम ते आइए बिन नावे पूज ना हो। महाराज जी आप जी का तीर्था के संबंध की ख्याल है, स्पिरिचुअल क्वेस्ट दे विच इनलाइटनमेंट अटेन करने दे वास्ते, दुखां दा छुटकारा पाने दे वास्ते लोग तीर्थां ते जांदे हन, पिलग्रिमेजेस ते जांदे हन, जिन्हां नूं होली प्लेसेस आख्या जांदा है। इस देर सच है महाराज जी आखदे हन साडे वास्ते नाम जपना ही तीर्थ ते जाना है, क्योंकि जो नाम जपेगा वो खुद ही तीर्थ बन जाएगा, खुद ही तीर्थ बन जाएगा। तो साडे वास्ते तीर्थ ते जाना भी नाम जपना ही कहते हैं। तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ भी नाम है।

ट्राई टू रिमेंबर दिस लाइन, नाम हमारे गुरु की से, क्योंकि तो गुरु की सेवा दे वास्ते बहुत ही कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो इवॉल्व होना चाहिए, नहीं तो इंसान थां थां थां थां ते सेवा करने की बजाय बेअदबी करी जाएगा, गुस्ताखी करी जाएगा और सेवा करने नाल हौमे वधाई जाएगा। पर नाम है जो उसकी आत्मक अवस्था नू उच्चिया उठाएगा, हंकार नू मिटेगा, अते उस दे विच ही सिर्फ गुरु की खुशी, और किसी गल च गुरु की खुशी नहीं। हुण तक आप जी ने यह सुने, भगत नामदेव जी आखते हैं, नाम मैं अंधा हां, जीवन दे रस्ते उत्ते जे नाम की छड़ी मेरे हाथ विच नहीं है तो मैं चल नहीं सकता, किते पहुंच नहीं सकता। नाम कहने मेरे जीवन का आधार। गुरु बाबा नानक देव जी महाराज दे बाणी दे विचों जो मैं प्रमाण दिते हैं वो ये कहते हैं कि नाम ही नाम है साडे घर दे विच, नानक के घर भूल गए केवल नाम, नानक के घर केवल नाम, कहते साडे घर च सिर्फ केवल नाम है और कुछ नहीं। नानक के घर केवल नाम, नानक दे घर दे विच सुप्रीम टेक्निक जो है, मेथड जो है, वे जो है वो सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है। कलयुग नाम प्रधान पदार्थ, भगत जना उधरे सारा संसार रोगी है, उसका एक ही दारू है, एक ही इलाज है, वो की है नाम। संसार दे विच बहुत इग्नोरेंस है, अंधेरा है, तो दीवा की है नाम। लोग अत्यंत लोग तीर्थां ते तुरे फिरदे हन, गुरु जी महाराज कहते हैं तीर्थ भी नाम ही है, नाम जपना ही तीर्थ स्नान है, नाम जपना ही तीर्थ स्नान है। कहते नाम ही साडे वास्ते वेद शास्त्र है, नाम ही साडे वास्ते, नाम जपना ही रब की पूजा है, अते नाम जपना ही गुरु की सेवा। सो ए है नाम की इंपॉर्टेंस। समा समाप्त है, आज सिर्फ उस विचार नू साढ़े आठ तक आते सो हुण तक असा यह सुनिया है कीर्तन का पहला हिस्सा कि गुरु बाबा जी के घर दे विच केवल नाम है, नाम ही दवाई है, नाम ही दीवा है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही पूजा है, नाम जपना ही सेवा। तो आओ प्यार नाल एक दफा उस पंक्ति नूं हुण गाइए, मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं अंधले दी टेक छड़ी सोटी, कहिंदे ओ वाहिगुरु तेरा नाम है उस तो बिना मैं चल नहीं सकता, अते जो वाहिगुरु दे उस नाम दी छड़ी तो बिना चलण दी कोशिश करदे हन ओ गिटे गोडे जरूर तड़ाणगे, ओ गिरणगे चोटा खाणगे। सो आओ वाहिगुरु जी दे नाम नू अपना आसरा बनाइए, समझिए अते गाइए, फिर कीर्तन दा थोड़ा जा अगला हिस्सा मैं आपकी सेवा रखांगा।

अपने मन वृत्तियों नु जोड़ के फोकस करके रखो और उस सारी की सारी विचार में अपने अंदर टिका के रखो जो सुने। इतना कुछ सुनने के बाद नानक के कर केवल नाम, नाम ही तीर्थ, नाम ही पूजा है, नाम ही रोगा नु खत्म करने वाली दवाई है, नाम ही जो दुख मिजरी सफरिंग जहर हैं साड़ी जिंदगी उन्हों का इलाज है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही गुरु की सेवा है। इस तो बाद जो ट्रूली एक सीकर है उसके मन दे विच ये जो एक अजीब मिस्टीरियस वंडरफुल मिरेकुलस इनवैल्यूएबल वस्तु है नाम, उसनु प्राप्त करन दी इच्छा जागती कि किवें मैनू प्राप्त हो, जो कि तमाम चीजां दा इलाज है, किवें मैनू प्राप्त हो। उस दे वास्ते इंसान दे अंदर कितनी लॉन्गिंग चाहिदी है, कितनी बर्निंग डिजायर चाहिदी है, कितनी तीव्र इच्छा चाहिदी है। जे इच्छा नहीं है, जो तड़प नहीं है, तो फिर वो वस्तु मिल नहीं सकती। गुरु महाराज जी का एक शब्द है, श्लोक है, जिस दे विच गुरु महाराज जी आखते हैं मेरी जो मैं सीख रहा नाम दा, अते मेरी सीकिंग दे विच जो इंटेंसिटी है उसनु देखो कितनी है। वो इतनी है कि जितनी देर तक वो नाम ना मिल जाए वो रज ही नहीं सकती, वो सेटल हो ही नहीं सकती, उसनु चैन आ ही नहीं सकता, वो टिक नहीं सकती। कहते हैं जिस तरह मिसाल उन्होंने तीन चार बहुत खूबसूरत दिखाई हैं, कहते हैं

बाबा जी दे चरना चरिया दो चार दिहाड़े नानक सर ठाठ विखे बाबा जी दे चरना विचे सेवा करदे रे पति पत्नी ते नाल नाल हर वेले पंक्ति पढ़दे सन प्रभ के सिमरन रिद सिद नौ नित ते परमेश्वर दी बख्शिश होई क्योंकि महापुरखां दी गवाही सी साड़ी अरदास परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि साड़ा परमेश्वर नाल कोई संबंध ही नहीं पर नाम जपण वाले वो तो हर वेले चेते रखते हैं सतनाम श्री वाहिगुरु उना दी अरदास अकाल पुरख कदे बिरथी नहीं जान देंदा ता ए नाम जपण वालियां दी शरण विच आए सन परमेश्वर ने बख्शिश कीती महापुरखां दी गवाही।

धन दौलत संपदा कौन सांभेगा। बाबा जी ने आख्या भी पलिया पलाया पुत्र तेनू दे दिए। इन्हां ने आख्या महाराज जिवें

अलपग हां कुछ समझ नहीं लगी। आख्या जिवें गड्डे दे हेठां दोने पहियां दे विचाले तुरा होंदा है ना, इस तरह आपा तुरा

सुखमनी दा नाम बाणी दा तुरा बनना है। सेवका ने आख्या जी सत वचन, बाबा जी ने आख्या जिथे एक दो पाठ जा पंज सत पाठ सुखमनी साहब दे रोज करदे हो ना, हुण लगातार सुखमनी दी बाणी

सुचेत होके नाम बाणी दा प्रवाह चलाया करो। उदो दा श्री सुखमनी साहिब दे पाठ, श्री अखंड पाठ, बेअंत बाणी दे प्रवाह श्री नानक सर विखे चल रहे ने। संगतां आके अपनियां अरदासां करदियां ने, बाबा जी दियां खुशियां लैंदियां ने, ते फिर चोलियां भर के अपने घरां नूं जांदियां ने। बाबा जी कोल बेशक कोई भी आउंदा सी, पर उनू इको ताकीद करदे सन, भई रब नूं विसरिया होया कि रब नूं चेते रखिया। जे आखना बाबा जी विसरिया तां कहना भई हुण समें नूं संभाल ले, चेते कर ले, क्योंकि महापुरखां नूं कोई स्वार्थ नहीं होंदा, कोई लालच नहीं होंदा। उनां नूं तां आए दी खुशी नहीं होंदी, गए दा गम नहीं होंदा। ओ तां केवल निरंकार नाल जोड़दे उन्हां पूर्णिया ते फिर बाबा ईश्वर सिंह जी चले। 13 वरियां दे निके जे समें अंदर बाबा ईश्वर सिंह जी ने 7 लख प्राणियां नूं अमृत छकाया, क्योंकि जोत तां बाबा नंद सिंह जी दी महाराज दी ही सी ना। 7 लख प्राणियां नूं गुरु वाले बना दिता। जदों आप पटने विच गए ते सरदार बख्शी सिंह ने अरदास कीती, बाबा जी थोड़े दिन होर रुको। ए बड़ा अमीर सी, धन दौलत दी परवाह नहीं सी। ते बाबा जी ने भी मुस्कुरा के आख्या भी जे रुकना है 2-4 दिन रुकांगे, पर भेटा लगेगी। इने मन विच सोचिया 50,000 रुपया दे देवांगा। बाबा जी हिरदे दी पट्टी वाच गए ते कहन लगे भी ये ता थोड़ी है। फिर मन विच कहंदा 1 लख रुपया दे देंगा, उस वेले 1 लख बहुत होंदा सी। ते बाबा जी ने फिर आख्या भी पेटा थोड़ी है, मां पुरखो जो मंगोगे देवांगा। आख्या बचन है जी महाराज। तो फिर आख्या बख्शी सिया, सब तो पहला तू अमृत छक ले। रो के चरना ते गिर पिया। दुनिया दे महापुरख आए, कोई पैसे लै गया, सेवा लै गया, माया लै गया, पर ऐसे महापुरख जिन्हां ने मैनू तारन दा सोचिया, ता चरना ते गिरिया महाराज बख्श लो। ता इस दे भी अमृत छकिया, ते होर इस नूं देख के हजारां संगतां ने अमृत छकिया। ए सन बाबा जी दे तारन दे ढंग, नाम जपावण दे निराले ढंग सन बाबा जी दे। जो कोई भी आउंदा उस नूं नाम जपाउंदे। ताई ता अज नाम जपिया, जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा।

निरंकार दे करो बख्शियां हुईया रूहां, जो संसार विच आके ए चेता कराउंदियां ने कि ए जीव तू निरंकार नू क्यों विसारे है। जिस परमेश्वर ने तेनू एडी अमोलक देही एडा अमोलक समा बख्शिया, तू उस निरंकार नू क्यों विसारिया।

संसार विच नित अवतार होंदे ने ते भुले भटके लोगां नूं मुड़ समत ला के वाहिगुरु नाल जोड़दे ने। ऐसे महापुरुषां दे

पर रब दे प्यारे तां रब नूं ही मंग लैंदे ने। तां इस तरह बाबा जी ने पूरने पाए कि किवें सिख ने गुरु ग्रंथ साहिब नाल प्रीत पाउणी, किवें हाजिर नाजर समझ के भोग लगाउणी। आप क्या करदे सन, जदों भी प्रसाद छकीए ता आखिए गुरु नानक तेरा दिता खारे, जदों भी पहनीए ता आखिए गुरु नानक तेरा दिता खादा पहन रहे हैं, तेरी बख्शी सदका सारियां खुशियां मान रहे हैं। ता इस तरह बाबा जी ने कई पूरने पाए ते जो कोई भी आंदा उसनू यही कहंदे भई एक दा हो जा। बहुते दरवाजियां दा प्रौणा

नवा शुरू करन लगे सा सोचिया दर्शन करे आईए ते फिर इना ने हाथ जोड़ के बेनती की बाबा जी की करिए नितनेम दा वेला ही नहीं मिलता। ता बाबा जी ने आख्या सरदार बूटा सिंह ते सरदार रोड़ सिंह नू आख्या बई गुरमुखा जे नाम जपन दा वेला नहीं मिलता ता तुहानू सोखी जुगती दस देने। बाबा जी ओ केड़ी आख्या जदो तेसा चलाउंदे हो ता मुख नाल वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे रहा करो, जदो लकड़ उपर आरी चलाउंदे हो ता रसना नाल वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे रहा करो। आरी लकड़ नू कटेगी ते रसना तो जपिया होया वाहिगुरु तुहाडे पापां नू कटेगा। साध संगत बोलो श्री

पूर्ण प्यार ते सत्कार विच गज के आखो सतनाम साधु कौन है जिने मन नु साध्या महाराज मैनु उन्हां दा मेल करा श्रोमणी कमेटी

0: कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे लागे हर फिरे, कहत कबीर कबीर हरी पिछे पिछे फिरदा पे कबीर।
1: ये कड़ी पौड़ी
0: गुरु जेड़ा है वो सिख नू प्यार करन लगता है।

ऐसा पुल है। भाई साहब कहते ने एक बारी नहीं पांच बारी गंगा चलाई, पांच पांच बारी प्रयागराज जाके त्रिवेणी दे इशनान करे, एक सिख नू इशनान करा देवे, एक सिख नू नहाउण वास्ते इशनान वास्ते पानी भर के देवे, उहदे इशनान दा प्रबंध कर देवे, इन्ना पुल है। कहते ने सिख नू प्यार नाल पानी पियाता, वैसे तो सब नू पियाना चाहिए, पर गुरु के सिख नू गुरु शब्दी विचार वाले नू गुरु प्यार वाले नू आदर सत्कार नाल पानी पिया दिता। समझ लो कुरुखेत्र की यात्रा हो गई, कुरुक्षेत्र वर्गे महान तीर्थ की यात्रा हो गई, ते जे कितें सिख नू प्रशादा छका दिता प्यार नाल भाव करके, लंगर छका दिता है ते समेत जग कर लिया, थोड़ा नहीं बहुत वड्डा पुन हो गया। भाई साहब कहते एक होर वड्डा पुन भी है, एदो भी वड्डा पुन है, जैसे सत मंदिर कंचन के उसार दी है। कोई सोने का मकान एक अद्धा बना सकता है, मिट्टी का ही बनाने मसा मसा बनना, एक नहीं सत सत मकान सोने दे कोई बना के दान कर दे, जे कि सिख नू शब्द सिखा दे, शब्द सुना दे, शब्द के लड़ ला दे, उदो वड्डा पुन। सत सत सोने दे मकान बना के दान करन नालों एक सिख नू शब्द सिखा दे, गुरु के शब्द दे लड़ ला दे। एक होर गल कहने साधा दे दर्शन करने वास्ते, महात्मावां दे दर्शन करने वास्ते, उन्हां आत्मा दे दर्शन करने वास्ते लोग तीर्थां ते भटकदे ने, पर भी वारी किसे साधु दे दर्शन करने जाना एक पासे ते किसे गुरसिख नूं मुठियां भर के सवा देना एक पासे। इस छोटे जतन नाल वड्डा फल, बहुत वड्डा महात्म है, गुरु के सिख दी खुशी गुरु की खुशी है। और एक बार ऐसा होया सी, भाई सत्ता बलवंड कीर्तन करके हटे सन, उठे ते अगों बाबा बुढ़ा जी मिल गया, कहन लगे भाई सत्ता अज मैं पछड़ गया, एक शब्द मैनू भी सुना दे। कहन लगे बाबा इस तरह थोड़ा कीर्तन सुनाया जाता, उथे आके सुनिया कर। बाबा निराश होके जा बैठा, संगत गुरु के बचन सुन लै, साहब गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह दे बचन सुन लै। शाम होई कीर्तन करन आउण बैठे, महाराज दूजे पासे मुंह करके बैठ गए, परेशान होए, हथ बन्ने, महाराज कहन लगे नहीं तुहाडा कीर्तन सुनना, तुसी मेरे सिख नूं शब्द नहीं सुनाया, मेरे की लगदे, मेरे सिख की खुशी नहीं लई, मेरे की लगदे,

एक मुसलमान वीर ने कलम चुके ते तवी दा हाल लिखना शुरू किया। गुरु अर्जन प्यारे क्या खेल रचाए, ओ कहंदे ए उन्हां दा खेल सी। कौन है चंदू, इतिहासकार ने इतिहास लिखदियां लिखदियां चंदू ते दोष दिता, जहांगीर ते दोष दिता, लेकिन धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दी दास ने बाणी पढ़ी, किसे पंक्ति विच भी किसे नु उलांबा नहीं दिता। एक बारी आखो प्यार नाल सतनाम श्री वाह। किसे भी थां ते कोई उलांबा नहीं दिता। कहंदे ने के गुरु अर्जन प्यारे क्या खेल रचाए, ते तवी किस तरह दी सी। अंगारों की मानो तपी लोह पर ही, जो बैठे हुए हैं समाधि लगाए। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने जदों देग विच आसन लाया, हजूर कहंदे चंदो तैनूं पता है इक गल दा, इक सोने दा ढेला इक सोने दी डली किसे पुरुष ने चाया कि इस डली दे 100 टुकड़े कर दें। उसने उस डली दे 100 टुकड़े कर दिते। हजूर कहंदे ने चंदू 100 टुकड़ियां तो बाद ए दस उसकी कीमत कितनी कटेगी। चंदू लाजवाब सी, किवें दसे एक डली दे 100 टुकड़े कर दिते। टुकड़े सामने पए ने, है ता सोना पर सोने दे टुकड़े हो गए। एहो ता पावन शरीर तख्त ते बहण वाला अज चारे पासे शरीर ते छाले हो गए। टुकड़े हो गए शरीर दे, सोने दे टुकड़े हो गए। चंदू चुप है। हसूर कहंदे चंदू जे किसे शरीफ नू मुसीबत विच पा दिता जाए, दुखां दियां दीवारां उहदे आसे पासे बना दित्तियां जाण, उहदी शराफत कितनी कु कटेगी। तां गुरमुख किसे गुरमुख ने लिखिआ, शरीफों की मुसीबत में शराफत कम नहीं होती। की होया जे तू तवी ते बिठा ले, की होया जे तू उबलती देग विच बिठा ले, की होया जे तू सिर ते रेत पाई, की होया जे शरीर ते छाले हो गए। शरीफों की मुसीबत में शराफत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े के कीमत कम नहीं होते। भला कदे सोने दी भी कीमत घट हुई। 100 टुकड़े नहीं, भावे कोई हजारों टुकड़े कर देवे, कीमत नहीं घट हुंदी।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਕਾ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਵੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਮੀਰੀ ਕੀ ਤੋ ਐਸੀ ਕੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੁਟਾ ਬੈਠੇ, ਫਕੀਰੀ ਕੀ ਤੋ ਐਸੀ ਕੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਪੇ ਆ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਭਾਵੇਂ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਤੂੰ ਓ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੂੰ ਓ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਆਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਵੇ।

जैसे अपने कपड़े बुनने वाला जुलाहा एक एक तागे की तंत को जोड़ जोड़ कर कपड़ा बनाता है, पर ऐसा भी हो जाता है जब ये तागों की तंदें उलझ जाती हैं तो कपड़ा बनना रुक जाता है। जो कपड़ा बनाने का कार्य है रुक जाएगा। जितनी देर तक इन उलझियों हुई तंदों को कोई सुलझाता नहीं, अपने आप तो जे उलझने मुकेंगी नहीं, सुलझाना ही पड़ेगा। इसको सुलझाने के लिए जिसको सुलझाना आता है वही सुलझा सकता है, पर जितनी देर ये सुलझेगी नहीं आगे का काम बंद हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। ऐसे ही मालूम होता है हमारे जीवन में उलझने ही उलझने हैं। वो सभी उलझने हमारी अपनी ही डाली हुई है। मनुष्य का जो बर्ताव है, स्वभाव है, इसने हमेशा ही सदा ही उलझने डाली है। सुलझाना इसको आता नहीं, और आत्मिक जीवन जीने के लिए सुलझाना बहुत अति जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। देखना कैसी उलझने हैं। पितर शब्द में बताया श्री रूपी कुआं है, कूटा एक श्री रूपी कुआं है, जो कैसी उलझने हैं, कैसे सुलझेंगी, अपने आप तो सुलझेंगी नहीं। श्री रूपी एक कुआं है, उस कुएं में पांच चरखी लगी हुई है, पांच ज्ञान इंद्रों की, और ऐसी बुद्धि जो विवेक नहीं, जो बुरे और भले की विचार करने वाली नहीं, वो इस श्री रूपी कुएं से एक टूटी हुई रस्सी, टूटी हुई लज के साथ बुरी वासनाओं का पानी भरती जा रही है। और देखना रस्सी तो टूटी पड़ी, लेकिन टूटती जा रही है, लेकिन श्री रूपी कुएं से ऐसी बुद्ध जो विवेक नहीं, वो मंदी वासनाओं का, विकारों का, बुरे कर्मों का पानी भर रही है, परती जा रही है। एक पितर शब्द में और बोला, ओह जे दिससे खूहड़ी कौन लाज बहारी, लाज घड़ी सो टूट पड़ी उड़ चली पनेहारी। पनिहारी क्या करेगी जब रस्सी टूट जाएगी, लाज टूट जाएगी, क्या मिलेगा आपको, आखिरकार तो पछताना ही पड़ेगा। ऐसे ही उलझने हैं हमारी जीवन में। देखना किसी की 20 साल की लाज टूट गई, किसी की 30 साल की, किसी की 40 साल की, किसी की 50 साल की, किसी की 60 साल की, कम हो गई आंखों भाई, इतना बूढ़ा हो गया अभी भी
बुरी वासनाओं का पानी पड़ता है, अभी भी विकारों का पानी पड़ता है, अभी भी इसको शांति नहीं। देखना हम जीवन में कितना कुछ खा गए होंगे, कितना पानी पिया होगा, कितना भोजन लिया होगा, कितने मेवे खाए होंगे, इसका कोई लेखा जोखा है? सब कुछ खाकर भी हम भूखे के भूखे हैं। आखो भाई, इतना बूढ़ा हो गया, 60 साल की रस्सी टूट गई, आंखों में तो दिखाई नहीं देता। थाके नैन सर्वन थाके, थाकी सुंदर काया, जरा हाक दी सब मत थाकी, एक ना थाक समाया। अखां आंखें जवाब देगी, देखता कम है, कानों में सुनाई नहीं देता। आज जो जीभ है बोलती नहीं, ततलाती है। मात को क्या हो गया, बूढ़े की मात को सब बोलते हैं, ये तो बूढ़ा हो गया, इसकी तो जो बुद्धि है ना, इसकी मात भी 72 की हो गई। ये बूढ़े को तो हम सोच भी सोचनी ठीक नहीं आती। सब कुछ इसका कम हो गया, बल कम हो गया, इसके जो ज्ञान इंद्रे वो साथ नहीं देते, कर्म इंद्रे भी साथ नहीं देते, लेकिन अभी भी माया का मोह नहीं टूटा। आखो भाई करो, अभी भी माया के मोह की जाल के गिरफ्त में अपने आप को बांधा हुआ है। एक ना थाकस माया, एक पितृ शब्द में और बोलते हैं, एक कुआं में एक गिर गया, बहुत अंधेरा था, उसको अचानक अचन चेत एक लज एक रस्सी हाथ में आ गई। उसने सोचा काम बन गया, अब तो बाहर निकल आएंगे। क्या देखा, जब ऊपर चढ़ने लगा, उस बंधी हुई रस्सी को पकड़कर वहां एक तुपका तुपका तुपका शहद का डिग रहा था, माखियों का डिग रहा था, वो उसकी जबान में आ गिरा, उसको मीठा लगा। उसने सोचा कोई बात नहीं, बाहर तो फिर आ जाएंगे, पहले हम मीठा खा लें। वो मीठा खाने में मस्त हो गया। इतने में क्या हुआ, जहां पर वो रस्सी बनी हुई थी वहां एक चिट्टा चूहा एक काला उस रस्सी को काट दिया, वो खूह में डिग पड़ा। ऐसे सतगुरु बोलते हैं, अन दिन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप में खाए मिठाई। देखना संसार रूपी कुएं में हम गिर पड़े हैं, श्वासों की रस्सी हमें मिली, इस मनुष्य जामे को सफल बनाने के लिए हम तो अपनी जीभ के चस्कों पदार्थों के लोभ के इतने मस्त हो गए, हम की श्वासों रूपी लस्सी तो टूट गई पर हासिल कुछ नहीं किया। ऐसे एक दृष्टांत एक महात्मा देते थे हमें, जब हम छोटे थे, कहते एक सांप के मुख में एक मेंढक आ गया, उस मेंढक ने अपना मुख खोल लिया, दूसरे मेंढक ने पूछा ये क्या करें, आप तो मरने लगे हैं, ते आपने मुंह क्यों खोला, कहते क्या पता मरते मरते कोई मच्छर मुंह में आ जाए। आखो भाई, ऐसा हमें बताया गया, बूढ़ा तो हो गया, देखना किसे समय भी अंत काल आ सकता है। आखो भाई, पर हम ऐसी उलझन में बंधे हुए हैं कि हमें आयु तो कम हो रही है लेकिन वो बुरे विकार कम नहीं हुए।
वो ऐसे ही है। देख लेना, किसी को ये बताओ, कभी कहकर देख लेना, अरे भाई नाम जप ले, आखो भाई करो, बहुत कुछ खा लिया पी लिया, अब तो नाम जप ले, किसको पूछ ले। हम भी कहते हैं, आप भी पूछ कर देख लें। हम पूछते हैं, एक ही हमें उसका जवाब मिलता है, क्या करें, अभी नहीं, अभी तो हमने बहुत काम करने हैं, अपने कुटुंब को पालना है, उसको काम लगाना है, अभी तो हमारे सिर पर, हमारे कंधों पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, हमारे कंधों पर। हम सब काम कर लें फिर हम नाम जपेंगे, पहले तो काम तो मुका लें, काम मुका लेंगे, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर लेंगे, जिम्मेदारियों को तो फिर कर लेंगे, नाम जप लेंगे। लेकिन उससे ये पूछना चाहिए, क्या किसी ने गारंटी ली हुई है कि हम बूढ़े होकर मरेंगे। किसे ने ऐसी गारंटी ली है कि हम सब जिम्मेवारियों को पूरा कर मरेंगे। हमने तो देखा है केते गर्भ गले, हमने देखा कितने बालिक कितने जवान जोबन भर में चले गए संसार से। पितृवाणी में क्या है, नए बारिक नए जोबन नए बिरदी कछ बंद, ओ वेला नह बूझी है जो आए पर जम फन। कितने आए कितने चले गए, ये भी बताया गया, जैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाढ़ परानी, जो जन्म है सो जानो मुआ, गोविंद भगत अस्त्र है थिया। देखना, जब किसान बोता है ना, उसको ये यकीन है, भरोसा होता है कि जो मैं बोआ है उसको काटना जरूर है। हर किसान जो भी हो, जो धरती में बोता है, ऐसा भरोसा करता है एक दिन उसको काटना है। जो जन्म में सो जन्म हुआ, ऐसे ही जिसने जन्म ले लिया, यकीन करना उसने एक दिन मरना भी जरूर है। जिसने भी जन्म ले लिया वो मरेगा। जब हमने देखा एक खेत में, एक खेत का रखवाला किसान ने वहां पर बिठा दिया राखी करने के लिए, जब राखी करने के लिए वो गया, उसके जाने से पहले उस खेत में ऐसी फसलें थी जिनको ऐसे फल लगे हुए थे जो पक रहे थे, और उसके जाने से पहले ऐसा भी देखा उसने, ऐसी फसलें भी थी जिनको फूल आए हुए थे, फूलों ने फल बनना था। उसने देखा ऐसी फसलें भी थी जो धरती में पुंगर रही थी, उसके सामने भी बोई गई। देखो रखवाला तो खेत की राखी करता है, किसी को भी खेत में अंदर नहीं जाने देता। कच्ची फसल तो क्या, वो पक्की भी काटने नहीं देता, लेकिन खेत का मालिक आ जाता है, खेत का मालिक आकर उस खेत में जाता है, राखी करने वाला उसको सलाम भी बुलाता है। राखी वो करने वाले के सामने सामने क्या हो रहा है वो देखता है, ये मालिक के क्या हो गया, इस किसान को क्या होगा, ये पक्की फसल की बजाय कच्ची क्यों काट रहा है। अखुवाई करो,
لیکن راکھی کرنے والا مجبور ہے. وہ تو یہ بولتا ہے یہ مالک ہے, اس کے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کو کیسے سمجھا سکتے ہیں, ایسے نہ کرو ایسے کرو. ایسے ہی جب ہم سنسار میں آئے, ہمارے آنے سے پہلے ہم ہمارے بزرگ ماتا پتا دادا دادی آدھک ایسے بزرگ آئے ہوئے تھے, ہمارے آنے سے ہمارے گھر میں بہنیں آئیں, آنکھوں آئے میرے بھائی آئے, میرے آنے سے میرے گھر میں بیٹی آئی بیٹے آئے. دیکھو ہم آئے سب پریوار دیکھا, کسی کی کیا مجال ہے, ہمارے کسی چھوکرے کو کسی بزرگ کو کوئی بول سکے, ہم جھگڑا کرتے ہیں. لیکن جب مالک پربھو آپ آ جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے, کبھی 5 سال کا بوٹا لے جاتا ہے, کبھی 10 سال کا لے جاتا ہے, کبھی 50 سال کا لے جاتا ہے, کبھی 60 سال کا لے جاتا ہے. ہم کیا کریں, ہم تو یہی بولتے ہیں جس تاکرسیوں نہ ہی چارہ تاں کو کی جائے ساتھ نمسکار. ہم تو یہی بولتے ہیں, نانک بولن چکھنا دکھ چھڈ منگی ہے سکھ, سکھ دکھ دوئے در کپڑے پہرے جائے منک, جتھے بولن ہاری ہے تتھے چنگی چپ. جتھے بحث نہیں کر سکتے آگے کچھ نہیں کہہ سکتے وہاں پر تو چپ ہی کرنی پڑتی ہے. ایسے بھی ہو جاتا ہے کھیت وہاں پر ہی رہ جائے رکھوالے کوئی لے جائے, ایسے بھی ہو جاتا ہے پریوار یہاں ہی, ہم اپنے آپ کو اس پریوار کا مکھی مانتے تھے وہ مکھی کوئی لے جاتا ہے. اس لیے سمجھاتے ہیں آپ تو کہتے ابھی تو نہیں, ہم ذمہ داریوں کو پورا کر کر مریں گے پھر نام جپ لیں گے. ارے بھائی کیسے جپے گا, جب نینو نیر پہ تن کھینا پے کیس تو دوانی, رودا کانٹ شبد نہیں اچرے اب کیا کرے پرانی. جب آپ کا گلا کھاؤں کھاؤں کرے گا پھر جپ لیں گا, آنکھوں میں پانی نرنتر بڑھے گا بہے گا پھر جپ لیں گا, نہیں جپ سکے گا. کہندے ارے بھائی میں آپ کو بات بتاتا ہوں, آپ نے تو کیا کرنا ہے کیا نبھانا ہے, آپ کے جو شریر کے انگ ہیں نا ان انگوں نے ہی آپ کو ویلا کر دینا ہے. بھائی گرداس بھی بولے انا لولا پنگلا تن تھکا من دے دستا, آنکھیں ہوتے ہوئی اندھا ہو گیا, پیر ہوتے ہوئے لنگڑا ہو گیا. میں نے تو دیکھا آپ نے دیکھا ہے, جب بالک تھا تب بھی سہارے کی ضرورت ہوتی تھی, بوڑھا ہو گیا اب بھی. بالک اوستھا میں دانت نہیں تھے بوڑھا ہوا تب بھی, بالک اوستھا میں بھی کامتا تھا بوڑھا ہوا تب بھی, بالک اوستھا میں تتلاتی زبان سے مانگتا تھا بوڑھا ہوا تب بھی. ارے سوچو بھائی جب نام جپنے کا سما ہے کیوں نہیں جپتے. آنکھوں بھائی ایسی الجھن میں بندہ ہوا, آج کہہ رہے ہیں کائرے من بکھیا بن جائے, وشے وکاروں کے جنگل میں کیوں جا رہا ہے. آنکھوں بھائی ارے نام کیوں نہیں لیتا پرماتما کا, جس نے آپ کی ہر سمے سہایتا کی ہے, سہائی ہوا ہے آگے بھی ہوگا.
भूलो रे ठग मूरी खाए। एक बात मैं आपको बताता हूं, ऐसे लगता है इस मनुष्य ने परमपिता परमात्मा को गवाया नहीं, भुलाया है। आखो वाहेगुरु, मैं फिर बोल दूं, इस मनुष्य ने प्रभु को गवाया नहीं, भुलाया है। देखना, जी हमने गवा दिया होता ना, एक बुरकी भी हम मुख में नहीं डाल सकते। आखो वाहेगुरु, उसको गवाकर तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते, उसको गवाकर तो हम बोल भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, उसको गवाकर को तो जी भी नहीं सकते। यह सच्चाई बात है, हमें उसको गवाया नहीं, भुलाया है। आखो वाहिगुरु, जब हम ये बोलते हैं भुलाया है, तो पितृवाणी में ऐसा संकेत दिया है, ए भूला नहीं भुलाया गया है। आखो वाहिगुरु, भूलो रे। भगत जी ने कमाल कर दी, विस्माती विचार प्रकट कर दिए। आखो वाहिगुरु, भूलो रे। देखना, ये भूला नहीं, इसको भुलाया गया है। मान मुख भूले भुलाई है, भूली थोर न कर। सवाल करने वाले ये करते हैं, आप कहते हो हैं भुलाया गया, तो किसने भुलाया है? आखो भाई, आपने ये बोला कि भूला नहीं भुलाया गया है, तो किसने भुलाया? ताय साहब कहते हैं, बाबा माया भरम भुलाए। आखो भाई, इसको माया ने भुला दिया, माया ने पुलावड़ों से भुला दिया। भुलावड़े भुली पुल पुल पछो ताणी, फिर छोड़ अड़ी सुती फिर की सार ना जानी। ए माया के पुलावड़ों में भूल गया। फिर सवाल करते हैं, ये तो 84 लाख जूनों का सरदार था, इसको तो सब बोलते थे बहुत सुंदर, बहुत चतर, बहुत सियाना, ये भूला क्यों? क्यों भुलावड़े में आया? आखो भाई, ये भुलावड़े में क्यों भूला और कैसे भूला? जब हमें ये बोला, भूलो रे ठग मूरी खाए, आखो भाई, इसको माया ने कैसे भुला दिया? कहते हुआ क्या, इस माया ने इसको ठग मूरी ठग बूटी सुंगा दी। आखो भाई, जय ऐसे समझ लें कि इस माया ने इसको ठग बूटी खिला दी। ठग ओरी भूलो रे ठग मूरी खाए, ए पलावड़ों में आकर भूल गया, इसने माया की ठग मूरी खा ली, ठग बूटी खा ली। कहते फिर क्या हुआ? कहते रतन पदार्थ खोया ठगया मुठा जाए। कहते हुआ क्या, जब इसने ठग बूटी खाई,

आत्मा की ओर ले जाता है, ऐसे मन निर्मल हो जाएगा। हमारा मन मैला क्यों है कि हम तन की तरफ झुकाव रखते हैं, शरीरों की तरफ झुकाव रखते हैं, शरीरों को देखते हैं, शरीर में रहने वाले को नहीं। आंखों वाहेगुरु, हम शरीरों को तो पहचानते हैं, जो शरीर में आप नारायण रहता है उसको पहचानते ही नहीं। आंखों वाहेगुरु, जो इस मंदिर में भगवान रहता है उसको तो पहचानते नहीं। तो फिर मन मैला होता है, उसके पहचाने तो बिना मैला होगा, जरूर होगा, होता रहेगा। आखो वाहेगुरु, आखो वाहेगुरु, वाहेगुरु। अब कहते हैं कि ये बहुत सियाना था, 84 लाख जूनों का सरदार, फिर इसने ये ठग मूरी क्यों खाई? तो आज के शब्द में कहते ऐसे हुआ, जैसे मीन पानी में रहे काल जाल की सुध न लहे, जैसे मछली पानी में रहती है, पानी में रहकर भी ये नहीं जान सकी कि पानी हमारा जीवन है, ये भी नहीं जान सकी ये जो जाल डाला गया है ये हमारी मौत है। मैं नहीं कहता, सतगुरु कहते हैं, मछली जाल ना जाने सर खारा असगाह, अत सियाणी सुंदरी क्यों कीतो विसाह, कीते कारण पाकड़ी काल न टले सरा। हुण अपने कीते कारण पकड़ी गई है, बड़ी सुंदर सी, सियाणी सी, सतगुरु कहंदे इसने भरोसा क्यों कीता? अगली पंक्ति विच बोले भगत जी, जे बा स्वादी लीलत लोह, अपने जीव दे स्वादा करके मारी गई। ए मछली अपने जीव दे स्वादा करके मारी गई, ऐसी जीव दे स्वादा करके मारी गई कि लोहे दी कुंडी नूं ही निकल गई ते शिकारी दे जाल विच फस गई। जे बा स्वादी लीलत लोह, लोहे दी कुंडी नूं निकल गई। ते साहिब बोले, भाई रे इउं सिर जाणो काल, ज्यों मच्छी त्यों मानसा पवै अचिंता जाल। आखो वाहिगुरु, जिवें मच्छी ते जाल पै जांदा है। आखो वाहिगुरु, अचिंता ही। इसी तरह समझाते हैं हमें, ऐसे करो। आखो वाहिगुरु, ऐसे करो भाई, ये मनुष्य भी नहीं जान सका कि परमात्मा की बंदगी हमारा जीवन है, माया का जाल हमारी मौत है, ये जान लेता तो परमात्मा की बंदगी में लीन हो जाता और जीव के चस्कों और पदार्थों के पोगों के लालच में ना आता। ऐसे बोले हैं भगत नामदेव जी, जैसे ए मछली जीव के स्वादों के कारण पाकरी गई, शिकारी के जाल में आ गई, तैसे ही ए मनुष्य पदार्थों के पोगों और जीव के चस्कों लाभ और लोभ की गिरफ्त में बंधा हुआ, ऐसे कनक कामनी बांधियो मोह, सुंदर स्त्री और पदार्थ सोना आदि इस दे मोह पाप माया दे मोह दे रूप रंगा विच इतना मस्त हो जाता है कि इसनू अपना आप भुल जाता है ते माया दे जाल विच। आखो आए, अपने आप को भुलाकर माया के बंधन में आ जाता है। और फिर आगे समझाते हैं, कहते देखना